जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: हेलो
1: हेलो,
0: मेरे साथ डांस करोगे?
1: नहीं।
0: ए, जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी।

0: उनको सैंपल दिखा दो, पसंद आ गया कंसाइनमेंट भेज दो।
1: ठीक है,
0: टेक केयर।
1: ओके।
0: रूम नंबर 224 के गेस्ट मेरे हैं, उनका जो भी बिल बनता है मेरे अकाउंट में डाल दो।

0: हे सगळं मिळेल एकाच ठिकाणी,
1: स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल या ठिकाणी। स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल एफ ब्लॉक 239 MIDC श्री टाइल्स चौक अहिल्यानगर। संपर्क क्रमांक 98 23 89 34 39। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

प्रभु में महावीर को देखा। शक्ति के स्वरूप में जब वर्णन करने की बात आई तो केवल पर्वत नजर आए। भूमि बनने के लिए सुधर्मा स्वामी बार बार बात करते हैं और अलग अलग तरह से बात करते हैं। भूमि प्रज्ञा ने कल्याण की प्रज्ञा, समृद्धि की प्रज्ञा, सुरक्षा की प्रज्ञा, और तीन प्रज्ञाओं में ही पूरा धर्म, पूरा अध्यात्म, पूरी जीवन की श्रेष्ठता समाई हुई। सफलता का मैं दूसरों को क्या बनाता हूं, ये तीन शब्द तय करते भूई प्रज्ञे। अब इस भूति प्रज्ञ के लिए फिर एक बार सुधर्मा समय का ऐसा एग्जाम्पल लेकर के आ रहे हैं। यदि आपको पूछा जाए कि वृक्ष में सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा है, तो फल के दृष्टि से चर्चा करोगे महाराष्ट्र में रहते हुए तो अमर वृक्ष कहोगे, कोकण में रहकर के चर्चा करोगे तो नारियल को कहोगे, और छाया के दृष्टि से पूछने जाओगे तो बरगद का पेड़ कहोगे, पीपल का पेड़ कहोगे। लेकिन सुधर्मा स्वामी ने कैसे पेड़ को छूना जिसको ना फूल लगता है ना फल लगता है, फूल भी नहीं है और फल भी नहीं, जिसको केवल पत्ते ही लगते हैं, केवल पत्तों का ही पेड़ है, और उस पेड़ को परमात्मा के भूति प्रज्ञ के साथ जोड़ रहे हैं। शालमली वृक्ष के सुनाए जैसा मलिवा। अब ये उस समय की बात है, आज तो शालमली वृक्ष श्रेष्ठ वृक्ष के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन जिस समय की बात सुधर्मा स्वामी कह रहे उस समय शालमली वृक्ष को श्रेष्ठतम वृक्ष माना जाता था। उसके पीछे बहुत सारी कहानियां भी है, उसके पीछे बहुत सारे सूत्र भी है, लेकिन सुधर्मा स्वामी जी सूत्र को कह रहे हैं कि कैसा वृक्ष है कुट शालमली वृक्ष जो देव कुरु की भूमि पर होता है। अब कुट शालमली वृक्ष ने ये जिसके केवल पत्ते जो है सुवर्णा नहीं, उसके बड़े सुंदर पत्ते होते हैं और उस पत्तों से प्यार करते हैं भुवनपति देवता। सुवर्ण कुमार जो भुवनपति है उन पत्तों से, उस पेड़ से प्यार करता है। उनका जो क्रीड़ा स्थान है जहाँ जाकर के वो पिकनिक मनाते हैं, जहाँ जाकर के वो थोड़ा सा जैसे आप पिकनिक के लिए जाते हैं ना, रिलैक्स हो जाते हैं। तो यदि देवताओं को रिलैक्स होना हो तो कहाँ जाते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसा वो पेड़ है, और मैं सोचता हूँ, तब से सोचता हूँ, 94 से सोचता हूँ कि शालमली वृक्ष को क्यों चुना गया है। खोजते रहता हूँ ऐसा क्या है शालमली वृक्ष में। तो जितनी बातें बुद्धि में आई उतनी बता रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसा कहते हैं कि जिस पेड़ को फल भी लगता है, फूल भी लगते हैं, पत्ते भी लगते हैं, उस पेड़ की शक्ति तीनों में डिवाइड हो जाती है। उसकी एनर्जी पत्तों में भी चली जाती है, फूल में भी चली जाती है, फल में भी चली जाती है। जिस वृक्ष को केवल फल ही लगते हैं उसकी सारी शक्ति कहाँ जाती है, फल में जाती है ना फूल में जाती है। और जिस वृक्ष की शक्ति केवल फूल में लगती हो, जैसे बहुत कम फूल होते पत्ते होते ना चाफे के पेड़ को, उसको फूल ही होते, फल का कोई सवाल ही नहीं। ऐसा भी एक पेड़ है कि जिसको केवल पत्ते लगते हैं तो उसकी सारी शक्ति किस में आकर के केंद्रित हो जाएगी, पत्तों में केंद्रित हो जाएगी। और वो के पत्ते भी कैसे हैं, जैसे मानो सुवर्ण के समान चमक रहे, शुभन है। जितनी भी प्रक्रिया चलती है पेड़ के जीवंत रहने की, वो ना फूल से चलती ना फल से चलती है। फल तो पेड़ का रिजल्ट है, फूल भी एक प्रकार से रिजल्ट है, लेकिन पूरे सूर्य प्रकाश को ग्रहण कर करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से उससे आहार बनाने के लिए उसके लिए कोई माध्यम है तो ना फूल है ना फल है, उसके लिए माध्यम कौन है, पत्ता ही माध्यम है। और वो प्रकाश से आहार लेता है, सूर्य प्रकाश से आहार बनाता है, उसके लिए सूर्य प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता है ना, उस पेड़ में भी जो शालमली वृक्ष है वो पत्तों से इस प्रकार की ऊर्जा लेता है, कंटिन्यू लेता है। जो प्रकाश जीवी होते हैं, जो प्रकाश का ही आहार करते हैं, और हम सबको भी वही लगते रहते हैं, हम डायरेक्ट नहीं लेते, इसलिए फिर वनस्पति के माध्यम से लेते हैं, क्योंकि मूल तो आहार सबका प्रकाश ही है, लेकिन कोई प्रकाश को चेंज करके लेता है, कोई प्रकाश को डायरेक्ट लेता है।
आप थोड़ा सा गौर करिए, धूप में हम लोग बैठ जाए तो ब्लैक हो जाते हैं, बराबर। यदि धूप के कारण से कोई ब्लैक होता होता तो झेंडू के फूल ने तो बिल्कुल काला ही हो जाना चाहिए, गुलाब का फूल होने का कोई रीजन ही नहीं रहेगा। कितने ही पीले फूल है और वो धूप में ही रहते हैं फिर भी वो काले नहीं होते। धूप के कारण से काले होते हैं कि प्रकाश पर हम जो प्रोसेस, हमारी स्किन जो प्रोसेस करती है उसके कारण से काले होते हैं, हमारी प्रोसेस के कारण। हम क्या प्रोसेस करते हैं उस पर, वो तय करता है कि हम काले होंगे कि गोरे होंगे। लेकिन नाम किसको रखते हैं, हम धूप को रखते हैं। करेक्शन किसमें करना चाहिए, स्वयं में। अपना इतना ही काम है, दूसरे पर ब्लेम लगाना है, अपने अंदर की प्रोसेस देखना ही नहीं। तो वही वृक्ष है, वही प्रकाश है, वही सूर्य है, लेकिन हर वृक्ष की प्रकाश पर प्रक्रिया करने की जो टेक्निक है, जो प्रोग्राम है, वो टोटली डिफरेंट है। तो शालमली वृक्ष के वाइब्रेशन, शालमली वृक्ष की ऊर्जा, आप तो इस बात को जानते ही होंगे ना, हर पेड़ की अपनी ओरा होती है। किसी पेड़ की ओरा आपकी ऊर्जा चूस लेती है और किसी पेड़ की ओरा पोषण करती है। नीम का पेड़ पोषण करता है, बबूल का पेड़ शोषण करता है। जो फल लगते हैं वो तो अलग बात है, फल की चर्चा नहीं, चर्चा है कि पेड़ के अस्तित्व से कौन सी ऊर्जा 24 आवर चलती है। नीम के पेड़ नीचे सोओगे तो आराम से स्वस्थता आ जाएगी, और बबूल के पेड़ के नीचे सोओगे तो कितना खा पी लो चूस लेगा एनर्जी। वैसे शालमली वृक्ष की जो ऊर्जा है, सुधर्मा स्वामी ने जब उसको शालमली वृक्ष को महसूस किया, किस बात के लिए महसूस किया, कि नंदन वन वनेसुवा नंदन माहु सेठम नाने न सिले न भूई पन्ने। एक तरफ शालमली वृक्ष, दूसरी तरफ नंदन वन। जैसे सारे फॉरेस्ट में, सारे जंगल में नंदन वन श्रेष्ठतम है, क्योंकि वहां पर केवल आनंद की ही अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है उसमें। वहां किसी प्रकार के नंदन वन में आपको कांटे नहीं मिले, कोई चुभने वाला मिलेगा ही नहीं वहां पर, इसलिए उसको नंदन वन कहते हैं, जहां आनंद की अनुभूति हो जाए। इस नंदन वन के कारण से, जैसे नंदन वन सारे जंगलों में श्रेष्ठ है, वैसे सारे पेड़ों में शालमली वृक्ष श्रेष्ठ है। आप जितना चिंतन कर सकते करिए, मैंने जितना चिंतन कर रहा हूं बता दिया आपको, और भी बहुत सारे डायमेंशन उसके हो सकते हैं, कि सुधर्मा स्वामी की प्रज्ञा के साथ, सुधर्मा स्वामी के शब्दों के साथ चलना आसान तो नहीं है। चल रहे हम, लेकिन ये नहीं कह सकता हूं कि उनके शब्दों के साथ पूरी अच्छी तरह से चल पा रहा हूं, क्योंकि वो गंधर्व लब्धि तीर्थंकर की अनुभूति और तीर्थंकर के सहवास में रह करके उनकी अनुभूति, और उसमें से उनके पास इतना शब्दों का भंडार, सव अक्षर सन्निवायी गंधर्व के लिए एक विशेषण लगता है। क्या सव अक्षर सन्निवायी, अक्षरों के समूह से जितने शब्द बनते हैं उन सारे शब्दों के भी मर्मज्ञ होते हैं। डिक्शनरी के आगे बात चले गए, शब्दकोश के आगे बात चले गए, कि शब्दों के संग्रह से, जितने अक्षरों के संयोग से जितने भी शब्द बनते सौ अक्षर सन्निवायी। अब वो अक्षर चुन करके रख रहे होंगे तो अक्षरों का अर्थ बोध करना, लेकिन जितना हो सकता उतना कर रहे हैं। रुखे सुनाए ज सामलिवा जनसिमृति वेद इति सुवर्ण वने सुवानंदन मा उसे टम नाने न सीले न भूई पन्ने। जैसा वो शालमली वृक्ष और नंदनवन है, वैसा परमात्मा का ज्ञान है। ज्ञान की उपमा हमेशा किसके साथ की जाती है, या तो उजाले के साथ, या ज्योति के साथ, या प्रकाश के साथ। लेकिन वृक्ष के साथ, नंदनवन के साथ ज्ञान की तुलना करने का कोई, जितना पूरा साहित्य नहीं कि जितना साहित्य पढ़ा है उसमें जहां भी ज्ञान की चर्चा आएगी तो प्रकाश की चर्चा है। ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान ज्योति, उसका ज्ञान कैसा है, तो सूर्य के प्रकाश समान है या ज्योति के समान है, ज्योतिर्मान है। लेकिन कहीं मैंने आपने भी कहीं सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा कि कोई कहे उसको कि उसका ज्ञान वृक्ष जैसा है या उसका ज्ञान नंदनवन जैसा है। लेकिन परमात्मा का जो ज्ञान और परमात्मा की जो भूति प्रज्ञा है,
वो शालमले वृक्ष के समान है, वो अंधकार को लेता ही नहीं है, सवाल ही नहीं अंधकार का कोई अमर, कंटिन्यू प्रकाश का ही आहार करना है। अरे प्रकाश की आहार करने की बहुत लंबी प्रक्रिया थी, ये जो आतपना लेते हैं ना उसका सूत्र वही है, वो तपना सूत्र नहीं है, तपने के लिए आतपना नहीं है, और जो वहां प्रकाश का आहार नहीं कर पाते फिर वो तपते रहते हैं। लेकिन सूर्य प्रकाश में बैठने का मतलब है कि उसके प्रकाश को प्रकाश पर जाना होता है। अब सूर्य के प्रकाश में ताप भी है प्रकाश भी है, आप उसके ताप को ग्रहण करोगे तो तप्त हो जाओगे, और उसके प्रकाश को ग्रहण करोगे तो प्रकाशमान हो जाओगे। किसको ग्रहण करना है? साधना की प्रक्रिया में वहां प्रकाश को ग्रहण करने के बाद गए, तपने के बाद बिल्कुल नहीं गई। यदि तपना साधना होता तो राजकुमार पार्श्व कमट को नहीं कहता कि तू ये पागलपन कर रहा है, वो धुनी के पास तप रहा था, बाहर भी चिलचिलाती हुई धूप, वापस धुनी लगा करके बैठा है, लेकिन ग्रहण है प्रकाश का, क्योंकि आत्मा का स्वभाव प्रकाशमय है। तो प्रकाश के साथ जैसा जैसा अपना कर्मन शरीर तेजस शरीर तन्मय होते जाता है, वैसे वैसे अंदर में उजाला होते जाता है, और उजाला होता है अंतर में, ध्यान में रखना, यदि अंतर में प्रकाश होता है तो समझना कि साधना चल रही है, और अंदर में भी अंधियारा है, विचारों में अंधियारा है, भावनाओं में अंधियारा है, संवेदनाओं में अंधियारा है, तो समझ लेना कि अपनी विराधना चल रही, आराधना नहीं चल रही है। प्राय ऐसा होता है ना, दान प्रकाश भी करता है, दान अंधकार भी करता है। स्वाध्याय करने के कारण से प्रकाश भी हो सकता है, और स्वाध्याय करने से अहंकार का अंधियारा भी हो सकता है। तपस्या करने से अंदर की ज्योति भी जल सकती है, और तपस्या करने के कारण से कहीं ना कहीं अंदर में अहंकार का भी जागरण हो सकता है। तो ये डिपेंड है। तो परमात्मा का ज्ञान कैसा है? नंदनवन जैसा है। अपने ज्ञान की चर्चा मत करो, अपने ज्ञान की चर्चा करो ही मत। अपना ज्ञान तो ना अपने को सुखी करता है ना दूसरे को सुखी करता है। क्या लगता है आपको? हाँ, सत्य ज्ञान हो जाए तो सुख होगा कि दुख होगा आपको? सत्य का ज्ञान हो जाए तो आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? हाँ, सुखी होंगे। एक बहन ने साड़ी का सेल लगा था, वहां से साड़ी परचेस करके लेकर के आई, अब कुछ भी प्राइस उसको लगा कि 200-250 रुपये में उसको लगा सस्ती मिल गई, और साड़ी पहन करके जब से उसके सहेली से बात करने गई, सहेली को पूछा साड़ी कितने में लाई, बोले 500 में लाई, सेल में लाई, और सहेली अंदर गई ना वैसी की वैसी साड़ी लेकर आई, बोले मैं 250 में लाई है। तो सत्य का ज्ञान होने के बाद आपको सुख होता है कि दुख होता है? अब वहां सुख भी हो सकता था कि यहां से आगे में कभी सेल में परचेस कर ले, ये सुख भी हो सकता था, एक ठोकर खा ली दूसरी ठोकर नहीं खाऊंगा। लेकिन प्राय अपने अंदर की जो स्थिति है वो सत्य का ज्ञान हो जाए तो परेशान हो जाते, इसलिए कितने बार जितो नहीं जाना उतो अच्छो है, कही बराबर कह रिया में, और भगवान महावीर के जितो जानो उतो कल्याण है, ठीक है, जितो जानो उतो परेशानी है। मैं भी बोलता हूँ कई बार, कोई बुजुर्ग लोग आते हैं ना, वो कहते हैं अब सुना ही कम देते, बंदा सुखी हो गए, क्या हो गए? सुखी हो गए। जिन जिन बातों को सुन करके दिमाग खराब होता वो बातें कान पर आने बंद हो गए, सुखी हो गए। मैंने कहा ये अपने पर डिपेंड है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान कैसा है? शालमली वृक्ष के समान है, नंदनवन के समान है। और इस गाथा के अनुसंधान करते हुए अंतरतम में एक तमन्ना जग जाए कि मेरा ज्ञान बबुल का नहीं हो, मेरा ज्ञान आग के वृक्ष जैसा नहीं हो, मेरा ज्ञान चुभने वाला नहीं हो। बबुल का ज्ञान मीन्स क्या है? चुभेगा, शोषण करेगा, दूसरे का शोषण करने वाला मेरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, दूसरे का पोषण करने वाला ज्ञान मेरा जरूर होना चाहिए। जिस ज्ञान से मेरा भी पोषण हो और दूसरे का भी पोषण हो, वो ज्ञान है शालमले वृक्ष के समान, वो ज्ञान है नंदनवन के समान। वैसे ही सील 24 घंटे
पेड़ का स्वभाव 24 घंटे, मेरा सिर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मुझे आनंद आए। मैं कुछ काम करूं, मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ उठूं, मैं कुछ चलूं, तो मुझे किसकी अनुभूति होनी चाहिए? खाने में आनंद की अनुभूति होती है क्या? आपसे पूछ रहा हूं। थाने सुवन में आनंद आवे कहीं? सोने में आनंद आता है क्या? क्या बोले? कंटिन्यू में मैंने कभी कभी आता है क्या? सोने में, नींद में आपको आनंद की अनुभूति होती है कि थकान दूर होती है? थकान का दूर होना और आनंद होना, ये दोनों एक है क्या? अब जब सामने सुवन में ही आनंद सुनाओ तो काम करने में तो आनंद हमको कोई सूत्र त्रियो नहीं, कोई संबंध त्रियो नहीं। गुरुदेव को कभी आपने आनंद के अलावा किसी रूप में देखा क्या? जिन्होंने दर्शन करे हो, सुबह गए तो भी चेहरा, दोपहर में गए तो भी चेहरा, रात को गए तो भी चेहरा, वैसा ही उन वे भी आनंद में रहते थे और जो आते थे उसको भी। अब हम भी दुख में रहते हैं तो आने वाले को अपने से क्या मिलेगा? जो अपने पास होता है वही हम दूसरे को दे पाते, जो मेरे पास नहीं है वो मैं कहाँ से दूंगा? आपके पास सुख होगा तो आप सुख दोगे, दुख होगा तो दुख देंगे। इसलिए आप सुखी रहोगे तो दूसरे को सुखी कर पाओगे। परमात्मा सील में आनंदमय और आनंदमय है, इसलिए उनके पास आने वाले को भी आनंद की अनुभूति हो जाती है। उनके कंटिन्यू, उनके वाइब्रेशन से, उनके ओरा से, उनकी आंखों से जो ऊर्जा जाती है, किसकी? आत्मा की नहीं, कार्बन शरीर और तेजस शरीर की जो ऊर्जा बाहर जाती है, उनके जो कर्म परमाणु बाहर निकलते हैं, उनको उनके जो निर्जर, एक गजब की बात आपको आगे अनुभव करनी है 20 तारीख के बाद, अभी जानकारी में रखिए। परमात्मा श्वास लेते हैं जैसी विश्व में वैसी बाहर में, और परमात्मा जब श्वास छोड़ते हैं तो श्वास में खुशबू होती है, कमल पुष्प की खुशबू होती है श्वास में। उनका जो उच्छ्वास है उसमें फर्गनेंस है, उसमें सुवास है, उसमें सुगंध है, कि जो ऑक्सीजन, जो हवा उनको छू करके आ गई उसमें भी खुशबू है। अपने को छू करके कोई हवा का झोंका चला जाए

कि वो उच्छ्वास में खुशबू आ जाए, क्योंकि अंदर का, और जब श्वासोच्छ्वास में खुशबू आती होगी तो जिस तीर्थंकर नाम कर्म का वेदन करते हुए उनके तीर्थंकर नाम कर्म के जो पुद्गल परमाणु कर्म के परमाणु वहां से उनसे दूर होते होंगे, उसमें तो क्या आनंद आता होगा ना, क्या मस्ती आती होगी। क्यों देवता आते वहां पर, क्या कारण देवता का आकर के बैठने का, परमात्मा क्या बोल रहे हैं वो वहीं बैठे बैठे देवलोक में बैठे बैठे जान सकते हैं, जैसे तुम यूट्यूब पर जान सकते हो, देख भी सकते हो। शायद एक सवाल पूछूं क्या आपसे, कभी क्रिकेट देखने के लिए आप स्टेडियम पर गए? जो गए उनको पूछो स्टेडियम में क्रिकेट अच्छा दिखता है कि घर के टीवी पर अच्छा दिखता है, घर के पीछे जो स्टेडियम में जाते हुए मूर्ख है नहीं, वहां जो फीलिंग आती है ना, वहां जो ऊर्जा होती है ना, वहां जो चलता है ना एक लहर, वो टीवी में नहीं आती लहर। टीवी में दिखता है जानते क्या, अरे इसने ये रन किया, उसने वो रन किया, उसने वो किया, उसने वो किया, देख सकते हैं आप। लेकिन स्टेडियम में बैठ करके जो खुशी की अनुभूति या दुख की अनुभूति होती है वो कभी भी आपको टीवी में बैठ करके हो ही नहीं सकती। इसलिए लोग क्रिकेट निकाल करके वहां जाते हैं। मैंने एक दो बार पूछा उनको, मैंने कहा उठो थाने क्रिकेट देखे के बराबर, बोले मां साहब देखे को नहीं हो, देखने के लिए तो टीवी अच्छी बने। फिर बोले मां साहब उठे तो कहीं मजा आवे ना, वो टीवी माते नहीं आवे। तो क्यों देवता आते थे, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा नंदन वन है। क्या है उनका ज्ञान, एक ज्ञान का प्रकाश है और एक ज्ञान नंदन वन का है। अब तीर्थंकर के ज्ञान के नंदन वन की अनुभूति लेनी हो तो देवलोक में बैठकर तो नहीं आ सकती, उसको तो उस पेड़ के नीचे जाकर के बैठेंगे तो ही नंदन वन की अनुभूति आएगी। ये मैंने बहुत देखा, बहुत देखा। उस समय समझ में नहीं आता था, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। अब गुरुदेव बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, फिर भी लोग उनके पास बैठे रहना पसंद करते, बैठन दन थोड़ा देर, हम कहते दर्शन हो गए ना, निकल, दर्शन हो गए आगे जाओ, कहते नहीं बैठना है। अब उस समय समझ में नहीं आता बैठने में क्या मिलता है, अब अक्कल आवे। हम सब की हालत क्या है बताऊं मैं आपको, जब तक पानी में है तब तक मछली को पानी की कीमत समझती, जब वो पानी के बाहर आती है ना तब उसको पानी की कीमत समझती है। पानी में रहते हुए पानी की कीमत समझ जाए, गुरुदेव के सानिध्य में बैठने का आनंद सामान्य व्यक्ति लेते थे। उनको लगता था कि यार गुरुदेव के पास बैठते तो कुछ तो भी ऊर्जा आती है। कोई अन्यथा मत लेना बंधु, कोई अन्यथा मत लेना। पुजारी हमेशा भगवान के भक्ति से शून्य होता है। मंदिर के पुजारी के मन में, जिस मंदिर का वो पुजारी है उस भगवान के प्रति उसके मन में उतना भक्ति भाव उल्लास नहीं रहता है। जो दर्शन के लिए मंदिर में आते हैं उनके आंखों में भक्ति होती है, पुजारी की आंखों में भक्ति, उसको तो क्या करना है, वो उसकी नजर मंदिर में बैठने के बाद उसकी नजर भगवान की तरफ रहती कि थाली की तरफ रहती। धन्यवाद थे, जल्दी बोल गया, जल्दी बोल गया। और आने वाली की नजर भगवान की तरफ। तो मंदिर में पुजारी में भक्ति भाव जागरूक है कि दर्शनार्थी में भक्ति भाव जागरूक है। गुरुदेव के पास बैठने का आनंद दर्शनार्थी लेते थे, विवाह से हटते नहीं थे, क्योंकि उनको नंदनवन की अनुभूति होती थी। उनको लगता था नहीं मां सब, मां सब बैठे शांति से, मैं कही करा था ने, गुरुदेव नहीं बोले माने मालूम है, गुरुदेव से बोले सोने दो गुरुदेव को, हमको केवल बैठने दो वहां पर। और कई बार तो पंजाब लुधियाना से लोग आते थे, ट्रेन बेसमय पहुंचती थी, गुरुदेव लेटे रहते थे और उनकी एक ही तमन्ना रहती थी कि बिना गुरुदेव को देखे कुछ नहीं करना है। पसीने से लथपथ आते थे, उनको कहते थे जाओ थोड़ा फ्रेश हो जाओ, खाओ पीओ फिर आओ दर्शन। नहीं बोले वो

खिड़की थोड़ी देर खोल दो ना, बस खिड़की में से एक बार देखने दो उनको। हम कहते उसे मैंने बस वो नूर देखना है, उनके शब्द होते थे वो नूर निहारना है। और जब खिड़की खोलते ना उस नूर को वो देखते ना, उनके आंखों से आंसू बहते। मैं नगर वालों को पूछ सकता हूं, मेरी बात तो मैं कह देता हूं, कभी नगर वालों को गुरुदेव को देख करके आंखों में आंसू आए क्या? जो पंजाब वालों के आंखों में आता था वो फील करते थे उसको, वो महसूस करते थे नंदनवन को। हम नंदनवन में रहे लेकिन नंदन को अनुभव नहीं कर पाए, ये दर्द है। क्या आनंद है शील में, आनंद है। इतना सारा कुछ छोड़कर के देवलोक से देवता आते क्यों थे? कोई दुखी आ जाए समझ में आता है, कोई परेशान व्यक्ति तीर्थंकर के पास आ जाए समझ में आता है, लेकिन जिनको कोई दुख नहीं है, जो देवलोक का आनंद ले रहे वो देव तीर्थंकर के पास क्यों आते थे? कि जो सुख उनको वहां नहीं मिलता था, वो आनंद की अनुभूति तीर्थंकर के क्यों सुधर्मा स्वामी नंदनवन के रहे? इट इज द रीजन। और चाहे जितनी तुम तीर्थंकर की चित्र देख लो या मूर्ति देख लो, एक भी मूर्ति तीर्थंकर के आशीर्वाद की मुद्रा में नहीं है। ध्यान की मुद्रा मिलेगी आपको, एक भी आशीर्वाद की मुद्रा में नहीं है। एक सिद्धसेन दिवाकर जैसे प्रतिभाशाली कवि ने ये पूछा कि तीर्थंकर परमात्मा तुम आशीर्वाद नहीं देते हो, कहीं नहीं दो आशीर्वाद नहीं देते हो, और जवाब इतना बढ़िया दिया ना, इतना बढ़िया जवाब दिया कि समझने के लिए टाइम लगेगा। बोले जो कभी कभार आशीर्वाद देते हैं उनको हाथ उठाना पड़ता है, जिनकी रोम रोम से आशीर्वाद बरस रहे हैं उनको हाथ उठाने की कोई जरूरत है ही नहीं। आपको ये मुद्रा करने की जरूरत ही नहीं, बोले आशीर्वाद की मुद्रा करने की जरूरत ही नहीं है, आपके तो रोम रोम से

0: मनुष्य, इसलिए सिद्धेश्वर दिवाकर परमात्मा को कल्याण का मंदिर कहते हैं, कल्याण मूर्ति नहीं कहते हैं, कल्याण का मंदिर कहते हैं। मूर्ति में और मंदिर में बहुत अंतर है। परमात्मा कल्याण के मंदिर है, इसलिए वो नंदनवन है। जैसे उनके पास जाकर के बैठे तो ज्ञान का आनंद की अनुभूति होती है, सील की आनंद की अनुभूति होती है। और सुधर्मा स्वामी ने इसको 30 साल महसूस किया है, 30 साल महसूस किया है कि क्या आनंद की अनुभूति परमात्मा के सानिध्य में होती है। इसके लिए सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो सुधर्मा स्वामी के अलावा कोई है ही नहीं। तो वो आनंद की अनुभूति, इसलिए ज्ञान को वृक्ष की उपमा दी, ज्ञान को नंदनवन की उपमा दी, शील को वृक्ष की उपमा दी, शील को नंदनवन की उपमा दी, और भूति प्रज्ञा को भी नंदनवन की उपमा दी, वृक्ष की उपमा दी कि प्रज्ञा कैसी है, भूति कल्याण की प्रज्ञा कैसी है। तो बस जैसा वो वृक्ष, तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो वृक्ष के साथ, वृक्ष अपना स्वभाव चेंज करता नहीं है, कुछ भी करो वो चेंज नहीं होता है। ऐसी पृथ्वी का गान यदि अर्थ पूर्णता के साथ करो, मैं समझ रहा हूं, थोड़ा थोड़ा समझो, ज्यादा नहीं समझ रही हूं, थे जका पृथ्वी ना प्रवचन ने आ रहा हो उसका कारण मैं समझ रहा हूं, तुमने बोला नहीं, जैसे जैसे पृथ्वी का यह अर्थ समझते ना, वैसे वैसे पृथ्वी गान करने में आनंद आ रहा है ना। पहले पृथ्वी बोलते थे उस समय ठीक है, एक भावना चलती कि भक्ति भावना है, भक्ति भावना है ना, लेकिन जैसे जैसे चल रहे हैं। और मेरी बात बोलूं क्या आपको, मैं रोज पुच्छन बोलता नहीं हूं, मैं रोज पृथ्वी गान करता नहीं हो, इसको भी पता है मैं नहीं करता कि मुझे पता है कि मैंने पृथ्वी का गान किया कि फिर मैं बाहर बैठ नहीं सकता, मेरी समस्या है कुछ और है। मैं ऊपर के ध्यान में से आता हूं तो मुझे बुरा मत मानना है, मुझे लोग सुहाते नहीं, कोई मेरे साथ बोले तो मुझे चलता नहीं, अब केने रीजन पूछने ढोल बजाओ लगाओ, हम मालूम तो पढ़ने आराम है, विहार में जब रहता हूँ तब तो इसको कहता हूँ बहुत सबको लेके तू आगे चला जा, भैया अभी उठे रहने के बाद आठे रेणु सुहावी लगे, वीर थिरा आनंद में रहने के बाद कोई आईने पूछे माँ सब दुकान नहीं चल रही है, थे कई आईने कई पूछो ना कोई, इसलिए मैं ओपन कर रहा हूं कि मैं 21 दिन आपको क्यों नहीं मिलता उसका कारण बता रहा हूं। एक बार वो आगम की आराधना शुरू हो गई, एक बार वो श्रुत की आराधना शुरू हो गई कि फिर उस मस्ती में से इस कुश्ती में आने की इच्छा ही नहीं होती, फिर लगता नहीं बस, उसमें से बाहर आना या हमारी साधना है, उठे रेवनो साधना को नहीं है, तपस्या कौन सी है, उठो बारे आऊ जकी तपस्या है, उठे रही ज्यादा तो तपस्या हुए को नहीं, उठे रही ज्यादा मस्त रहे मस्ती में आए, मजा आवे आनंद आवे। तो क्योंकि परमात्मा के सानिध्य में रहने का जो आनंद है उसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। और ये विरोधी के साथ जीना नहीं, परमात्मा के साथ जीना। धन्यवाद आपको कि आप लोग पृथ्वी का आनंद लेने के लिए आ रहे हो ना। तो ध्यान में आया परमात्मा का ज्ञान कैसा है, शाल्मली वृक्ष के समान, नंदनवन के समान, कि प्रकाश के लिए तो आंख जरूरी है, प्रकाश के लिए आंख जरूरी है, लेकिन पेड़ की अनुभूति लेने के लिए आंख की जरूरत है ही नहीं। पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए, आंधा हो कि आंख वाला हो कि कैसा बहरा हो कि पागल भी जाने बैठे ना, तो भी उसको अनुभूति वही होगी। इसलिए तो बंधु, इसलिए तो बंधु, थोड़ा सा आवाज दे, इसलिए तो बंधु सांप भी वहां पहुंचता है, नेवला भी वहां पहुंचता है, तो परमात्मा के पास जाने के बाद उसको याद ही नहीं रहता कि मैं सांप हूं और सामने वाला नेवला है। यदि सांप को सांप का महसूस एहसास हो जाए और सामना नेवला नजर आ जाए तो सांप नेवले के छोड़ेगा नहीं, नेवला सांप को छोड़ेगा नहीं, सांप नेवले को छोड़ेगा नहीं। लेकिन परमात्मा के सानिध्य जब दोनों पहुंचते हैं तो भूल जाते कि मैं सांप हूं, भूल जाते कि मैं नेवला हूं। उनको भी अनुभूति होती है, तैयार कठे नेवला ने देखा, बार कटे सांप ने देखा, वो देखे नहीं, परमात्मा रसाते रहो, उनका आनंद ले लो, सांप ने बाद में कभी देखता है ना। तो इसलिए उसको नंदनवन की उपमा दी, ज्ञान को नंदनवन की उपमा देना, ज्ञान को वृक्ष की उपमा देना और वृक्ष के माध्यम से ज्ञान को अभिव्यक्त करना, ये वही कर सकता है वो जो सुधर्मा स्वामी ने जैसे परमात्मा को महसूस किया, जहां स्वयं वो ही जहां निसंतम, जैसा तुमने महसूस किया, जैसा तुमने सुना, वैसा ही बोलना। और इसलिए विरुद्धी विरुद्धी है, विरुद्धी विरुद्धी है, क्योंकि इसमें सुधर्मा स्वामी का 30 साल की भक्ति की अनुभूति व्यक्त होती है। तमन्ना है कि तुम्हारे दिल के अंदर में परमात्मा की, सुधर्मा स्वामी के परमात्मा की प्रतिष्ठा हो जाए, और एक बार तुम्हारे दिल में सुधर्मा स्वामी के द्वारा दिए हुए परमात्मा की प्रतिष्ठा होंगी ना, तो तुम भी मेरे जैसे ही पागल हो जाओ और अपने अंदर कहीं से नेगेटिविटी आए नहीं। वो जो जीवन शैली परमात्मा ने सिखाई, उसका ट्रेनिंग का कार्यक्रम डिस्कवर योर सेल्फ का 9, 10, 11 3 दिन रेजिडेंशियल शिविर के रूप में संपन्न होगा। जिनको भी उसमें सहभागी होने की इच्छा है, वे जरूर आज ही अपनी तैयारी कर करके कल सुबह पहुंचने का ध्यान रखें। 9, 10, 11 3 दिन के लिए जो प्रेग्नेंट हो चुकी है ऐसी माताओं के लिए, दोपहर में 2 से 5 गर्भ अरहम गर्भ संस्कार साधना का शिविर रखा हुआ है, दोपहर में 2 से 5। आपके जानकारी में जो भी हो ऐसी बहनें जिनके 1 महीना 2 महीना 3 महीना की हो, ऐसी इन बहनों को आप इसमें जोड़ने का ध्यान रखें, उनको सूचना दें, उनके पास खबर दें। शिविर मैं स्वयं कंडक्ट कर रहा हूँ, शिविर मैंने, दोनों ही शिविर मैंने कंडक्ट कर रहे हैं, और मैंने कंडक्ट करने इसका मतलब उसमें और किसी का कोई ज़्यादा सहभाग रहेगा नहीं। तो ये शिविर, प्रेगनेंसी का भी शिविर, दोपहर में 9, 10, 11 2 से 5 डिस्कवर योर सेल्फ का भी है 9, 10, 11 रेजिडेंशियल शिविर। तो दोनों शिविर के लिए आप लोग पूरा ध्यान रखें, जिन जिन को जोड़ सकते हैं, जो जुड़ सकते हैं आप जुड़िए, आप नहीं जुड़ सकते औरों को जोड़िए। मेरी भावना डिस्कवरी और सेल्फ के लिए भी मेरी भावना है कि एक बार खास करके आपके 25 साल के 20 साल के 30 साल के जो जवान है, वो यदि एक बार डिस्कवरी और सेल्फ में जुड़ जाए तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिसमें डिस्कवरी और सेल्फ के शिविर में सहभागी होने के लिए सिकंदराबाद में नगर से कुछ बेटियाँ पहुँची थी, मुझे नाम याद नहीं है, कोई माँ यहाँ बैठी होगी तो मुझे कह सकती है। और वहाँ से जब बेटियाँ शिविर करके आई तो उस समय महासती सी ओजस दर्शन जी महासम नगर में ही थे, तो माँ ने 2-3 दिन के बाद जाकर के सती जी को कहा, मालूम नहीं बोले मासा वो शिविर में कई हुई हो, जबकि सब्जी भावती नहीं थी, नहीं वहाँ सब्जी में थाली में परोसी और प्रेम से खाली बोले, उन्हें आश्चर्य हुए बोले। और एक बार डिस्कवरी और सिविल शिविर में कोई रह जाए तो ना मुझे मोबाइल का टेंशन है तुम्हारे, ना इंटरनेट का टेंशन है, ना गेमिंग का टेंशन है, 72 घंटे एक बार वो परमात्मा की विधि के साथ जुड़ जाए तो ना तो फिर वो शादी के लिए इधर उधर जाने का कोई टेंशन है मुझे। ये शिविर है, एक अनूठा शिविर है, अद्भुत शिविर है, मैं कह रहा हूँ उस शिविर का अनुभव अद्भुत है, अनूठा है। और एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ कि पिछले 8 महीने से शनिवार शनिवार इसके मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग चल रही है और उनके नेक्स्ट जो उनका शिविर शुरू होने जा रहा है मास्टर ट्रेनर का, उसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखे 51,000 और 51,000 में भी वहाँ बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो वो शिविर है 72 घंटे का, आप लोग जरूर जुड़े, आप जुड़े इसका आग्रह मेरा कम है, लेकिन आपके नेक्स्ट जनरेशन जुड़े इसका आग्रह मेरा बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। आपके कपल के रूप में भी जुड़ना चाहिए इसमें तो जुड़ सकते हैं, जो न्यू है वो इसमें जुड़ जाए। तो ये आग्रह है कि डिस्क्रिप्टिव सेल्फ का शिविर, उसके लिए जरूर जुड़े। आप नहीं जुड़ते तो जोड़ने का प्रयास करें। प्रेगनेंसी के शिविर के भी ध्यान में रखें। चारिमंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतोध मंगलम चलारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतोधमो लघुत्तमा चत्तारी शरणम भवज्जामि अरिहंते शरणम भवज्जामि सिद्धे शरणम भवज्जामि साहू शरणम भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम भवज्जामि चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदय। स्पेशली जिनको नींद नहीं आती है, जो गोलियां ले बिना सोते नहीं, उनके लिए तो शिविर बिल्कुल आज जरूरी है। आज के पचकान एकासन एकासन उगे सूर्य एक समय गर्भ्रांति तीन हर के पचकान स्वासनम खैमम सैमम सत्सागरेणम महत्तागरेणम सो समयावत्यागरण ओसरे ओसरे ओसरे। आज का आयम बिल उगे सूर्य आयम बिलम पचका में लेवल लेवेनम सत्सागरेणम महत्तागरेणम सब समयावत्यागरण ओसरे ओसरे ओसरे। आज का उपवास उगे सूर्य मदरम बचकामी तिव्यम प्यारम स्वस्नम खैमम सैमम सरसा करे न महत्ता करे न स्वसमय वत्यान ओसरे ओसरे ओसरे। हम अवसर
1: राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य आनंद श्री मन साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। मंच पर विराजित महाराष्ट्र केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन।
2: उस ग्रुप के लिए
1: बाहर गांव से आए हुए सभी गुरु भक्तों का समर्पण चातुर्मास समिति स्वागत एवं सम्मान करती है।
0: ठीक है, कल बोलेंगे।
1: आप सबको विदिति है कल का गौतम निधि का जो अधिवेशन हुआ, सचमुच में बहुत अनोखा ये अधिवेशन हुआ और अहिल्या नगर और समर्पण चातुर्मास समिति का सौभाग्य है कि इस आनंद समोसरण में 19वां अधिवेशन
0: काउंटर पर कोई है क्या
1: जोर और शोर से मनाया गया। बाहर गांव से आए हुए सभी गुरु भक्तों का श्रीमती प्रमिला बाई सौरभ जी पराग जी बोरा परिवार की ओर से गौतम प्रसाद जी की व्यवस्था पीछे भोजनालय में रखी हुई है। बाहर गांव से आए हुए और एकासना जिसको है उन्होंने उसका जरूर जरूर लाभ लेवे। जय महावीर जय अनंत।